आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 7 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 8 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: अरे आज तो तुम शहर जाने वाले थे, गाड़ी छूट गई क्या?
1: छूटी नहीं, छोड़ दी। चलती गाड़ी से किसी ने खींच कर उतार दिया मुझे।
0: किसने?
1: तुमने।
0: मैंने? मैंने कैसे?
1: तुम्हारी यही पुकार कल रात मैंने सपने में सुनी थी और इसी पुकार ने चलती गाड़ी से मुझे उतार दिया। जा रहा था शहर नौकरी करने, और जो काम करना नहीं चाहता था वो ये करने के लिए राजी हो गया।
0: कौन सा काम?
1: डोली उठाने का। अब रोज यहां आया करूंगा तुम्हारी पुकार सुनने के लिए। क्या हो गया तुमको?
0: मुझको

0: कुछ नहीं हुआ, तुमको हो गया।
1: मुझको?
0: हाँ हाँ तुमको।
1: कौन सा पागलपन देखा तुमने मुझ में? मैंने कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की?
0: पागलपन नहीं तो और क्या, दिन में मिली और रात को तुम्हारे सपने में आ गई। मैंने तो तुम्हें नहीं पुकारा था, फिर भी मेरी पुकार सुनकर चलती हुई गाड़ी से कूद गए। ऊपर से कह

ये कहानी नहीं है रानी, अरे प्यार है प्यार। क्या प्यार कागज पे लिखी कहानी नहीं जो

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 9 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 10 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हमको तरसाए।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 a.m. in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: क्या है चितचोर?
1: 1 2 3 4
0: क्या है चितचोर?
1: यू सिंग लाइक किशोर बट शादी का दे
0: ओ यस सितंबर 8
1: वेरी लेट
0: डार्लिंग वेट

0: सच है बिल्कुल।
1: तू है बुलबुल।
0: सच है बिल्कुल। यू आर वंडरफुल।
1: लग जा गले ए, लग जा गले, दुनिया जले। छम छम छम छम छम छम, एक गण हम तुम पे दिल निसार करता है। रोज रोज रोज ही तुमको प्यार करता है। रोज

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 noon in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: शायद तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

देखो हाँ मायके नहीं तू मत मायके मायके मत जाइयो

नो कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज। भैरो बिकम्स बैरन एंड बैरन बिकम्स भैरो बिकॉज दे माइंड द वेरी नैरो।

0: सोचो।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 1 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

लौट आए

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 2 PM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: हम पर शक ना लाओ, अब जो मिलना।
1: अच्छा जी,

0: कुर्सियों से,
1: क्या
0: झांके न खिड़कियों से,
1: दरवाजा खटखटाया लगता है कोई आया,
0: अरे कह दो के आ रहे हैं साहब नहा रहे हैं।
1: मम्मी को तो डैडी से

0: नहीं बताऊंगी।
1: तुझे दिल की बात बता दूं?
0: नहीं नहीं नहीं नहीं

0: सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.
1: नहीं नहीं नहीं नहीं।

हस के साडे नाल अरे साथ खड़े हम दोनों लगते हैं सोनी महिवाल।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम के 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 5 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

से ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू है, संभल ओए मोच न आ जाए। मारना ऐसे ठोकर तेरा पैर फिसल जाए, है कितनी नाजुक तू है, संभल ओए मोच न आ

हमें भी चलो ले जा छल्ला निशानी, हमें भी रानी ले जा छल्ला निशानी, मेरी मोहब्बत।

0: पर किया तो ठीक किया।
1: रोजी, ए रोजी, रोजी, पहले क्रिसमस में तो सबसे पहले आ जाया करती थी, मगर कुछ दिनों से लगता है तुझे कुछ हो गया है। कहीं किसी से लव वव तो नहीं हो गया
2: क्या?
1: ओफो, लव यानी प्यार, मोहब्बत।
3: वो होने से क्या होता है?
1: जब मुझे हुआ था
2: तो
1: मुझे नींद नहीं आती थी।
3: मुझे भी नहीं आती।
1: मुझे भूख नहीं लगती थी।
3: मुझे तो प्यास भी नहीं लगती।
1: दिल में दर्द होता था।
3: दर्द तो मुझे भी रहता है।
1: बस यानी कि तू गई काम से।
3: क्या?
1: ओफो, यानी कि तुझे प्यार का रोग लग गया है और इस रोग की बस एक ही दवा है।
3: वो क्या?
1: वो ये कि जिससे प्यार हुआ है अगर वो दिल पे हाथ रख दे तो दर्द मिट जाएगा। रोजी, ए रोजी, ओ गॉड,
4: क्या हुआ यो यो?
1: देखो ना क्या हो गया है अपनी रोजी को।
4: ये रोजी तो हर रोज कोई ना कोई नाटक करती है।
1: नहीं नहीं, ये नाटक नहीं है, ये तो बेचारी सचमुच बेहोश हो गई है। कोई दवा दारू करो ना इस बेचारी का।
4: ये जो दौरा है ना, ये मिर्गी का है और इसका इलाज सिर्फ जूता सूंघा।
1: नहीं,
4: देखा, जूते का नाम लिया और दौरा गायब।
3: By God, आज क्रिसमस का दिन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये दौरा मिर्गी का नहीं है।
4: तो तूने बुलाया और मैं चला आया। यारों का टाइम मत बर्बाद कर, सच सच बोल तुझे कष्ट क्या है।
5: मुझे दर्द रहता है। दिल में दर्द रहता है।
6: अच्छा,
5: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
6: बाप रे,

किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यूज स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

हाय हेलो नमस्ते गुड इवनिंग सत श्री अकाल राधे राधे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन। आ चुका हूं लेकर आज बहुत ही प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल। यस, 1990 से लेकर आज तक के गाने आप सुन सकते हैं इस प्रोग्राम में, और अभी आप मुझे डिमांड कर सकते हैं सिर्फ सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से। जी बिल्कुल, सॉन्ग रिक्वेस्ट कहाँ मिलेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ। रेडियो हॉटस्टार का एप्लीकेशन को ओपन कीजिए, सबसे नीचे जाइए, दाहिने साइड में लिखा होगा मोर, MORE, मोर मोर लिखा होगा, वहां पे क्लिक कीजिए और सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा सॉन्ग रिक्वेस्ट का, वहां पे अपना नाम डालिए, गाने के बोल लिखिए, उसके बाद और कुछ जो मैसेज आपको जो लिखना है लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, और सीधे सेंड कीजिए, मेरे पास आ जाएगा और मैं आपके गाने को जरूर प्ले करूंगा। फिलहाल मेरे पसंद के डिमांड की एंजॉय कीजिए। आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे, दीवाना बना दे, दीवाना बना दे। बहुत से दोस्त जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और सबसे पहले जुड़ने वाले हमेशा की तरह हमारे सरफू भाई सरफराज पटेल जी जुड़ चुके हैं साउथ अफ्रीका से, और मोहम्मद शकील साहब जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और उसके बाद से हमारे आरिफ सिंधी जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आरिफ सिंधी जी। तो लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ रेडियो हॉट स्टार, जो दीवाना बना दे। धन्यवाद देते हैं आपका भी। और इनके साथ साथ जुड़ने वाले हैं हमारे कौन कौन से दोस्त, बता दूं कि बाबूलाल अंजाना जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बाबूलाल अंजाना जी। और अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और ज्योति खटवड़े जी जुड़ चुके हैं, नमस्ते जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और साथ ही साथ हमारे प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। और आत्माराम पाटिल जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है आत्माराम पाटिल जी। और आदरणीय सर्वेश भगत जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। साथ ही साथ काजल झक्कास जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है काजल झक्कास जी। और राधा कृष्ण गोप जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, सभी दोस्तों को नमस्कार भी कर रहे हैं। और हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़े जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और लिखते हैं कि कोई कहे दीवाना, कोई कहे अनजाना, भी गाना बेहतरीन लगा वो, थैंक यू सो मच, आप स्टार्टिंग से सुन रहे हैं। मीना इब्राहिम जी जुड़ चुके हैं यूएसए, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और सुनीता गोप जी जुड़ चुके हैं सरायकेला झारखंड से, आपका भी वेलकम है। और अरुण मंडल जी हैं, आपका भी वेलकम करता हूं मैं। और साथ ही साथ हमारे जुड़ने वाले निशांत राय बोले जी, आपका भी वेलकम है। और जितेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और अनिल कश्यप जी क्या कह रहे हैं भाई, सुने ये भी जुड़ चुके हैं अपने फीडबैक के साथ भी, सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग,
1: कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छे हैं आप बताइए।
1: और मैं तो ठीक हूँ, और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उमस भरी गर्मी है, बारिश होने वाली है और हो भी रही है थोड़ी बहुत, और ऐसा लग रहा है कि कमाल होने वाला है। और 90 का आज थीम है धमाल होने वाला है। हमने भी अपना फरमाइश भेज दिया है, आप रख लीजिएगा संभाल के, और जब आप प्ले कीजिएगा तो हम भी आपको दुआ देंगे अपने अच्छा दिल से निकाल के। थैंक यू अमन भैया,
0: धन्यवाद देते हैं भाई। आते के साथ आपने भाई अपनी अर्जी पेश कर दी कि भाई मेरा भी गाना प्ले होना चाहिए। मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मनीषा शर्मा जी, आपका भी। और फैज जी क्या कहते हैं भाई, इनके भी सुनते हैं
2: जी। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, बिल्कुल आप जयूस ज्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं।
0: थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ हमारे जुड़ने वाले कौन साहब है, ये यानी कि विष्णु चंद्र जी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं विष्णु चंद्र जी, आपका भी। और जागीर खान जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ चुके हैं, वेलकम है। और साथ ही साथ हमारे अनिल कुमार जी हरिद्वार वाले भी जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम है। तो बस मैं स्टार्ट करूँगा इस एक शायरी के साथ के एक अदा आपके दिल चुराने की, सुंदरता की मुरत जी, एक अदा आपके दिल चुराने की, एक अदा आपके दिल में बस जाने की, और चेहरा आपका चांद सा और, चेहरा आपका चांद सा और, एक हसरत हमारी उस चांद को पाने की, उस चांद को पाने की। जी बस आगाज करता हूँ आज के प्रोग्राम का आप सभी के प्यारे प्यारे नगमों के साथ। और सबसे पहला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, ये मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दो, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकलना जाए।

0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, क्योंकि तेरे आने की खुशी में सच में मेरा दम निकल ना जाए। और वैसे फीडबैक भी मेरे पास बहुत से आ चुके हैं, बबीता जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं, सभी दोस्तों को नमस्कार कह रही हैं, और बागेश्वर निशा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, और अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी, और सर्वेश भगत जी,
1: रहमान सर जी, आरिफ सिंधे जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम किया आपका भी। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि मेरे जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दो, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकलने जाए, जबरदस्त गाने मिला सुनने को, मजा आ गया सुन के। और हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़े जी लिखते हैं कि तेरे आने की खुशी में बेहतरीन गाना सुनने को मिला। अगला जो डिमांड है हमारे धनेश मिश्रा जी का, दिल्ली से सुनना चाहते हैं, मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, बिल्कुल सुन लिया, इंजॉय कीजिए इस गाने को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बनाते, बहुत सारे फीडबैक भी आ चुके हैं मेरे पास। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि मजा गया सर जी, सच में कहा मजा आ गया ना। और ऐसे सरवजीत सेठ जी लिखते हैं कि अमन सर जी नमस्ते नमस्ते, वेलकम करते हैं आपका भी। और मंगेश देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं मंगेश देशमुख जी आपका भी। और हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि गणेश जी एंड दिल्ली वाले जी का मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और साथ ही साथ रवि महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, वेलकम है, क्या कहते हैं।
1: गुड इवनिंग अमन सर जी।
0: गुड इवनिंग,
1: क्या बात है, लाजवाब सॉन्ग, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए, लाजवाब सॉन्ग, मजा आ गया
0: जी। धन्यवाद देते हैं आपका भी। और काजल झक्का जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और लिखते हैं कि शानदार गाना चल रहा है। मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना है जी, मुझे बहुत पसंद है ये गाना। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि मैंने दिल का हुक्म सुन लिया, गाना मुझे सचमुच बहुत सुंदर लगा है। और निशांत रायबोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है ये। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि शानदार डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं। और खुशबू कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं खुशबू जी आपका। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर गाना, इसी बात पर अगला जो डिमांड है बागेश्वर निषाद जी का है कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, मैंने भी अपना दिल ये जान तेरे नाम कर दिया। इंजॉय कीजिए इस टाइटल को।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं और पहला तो यही सुनेंगे।
1: अमन भैया, मैं 25 जून से आपको सुन रहा हूँ। अच्छा। और किसी भी दिन ये नहीं लगता कि आज का शो मतलब सुनने लायक नहीं हो या फिर बोझिल लगे। लगता है पर डे की नया ही है। अच्छा। तो इसके पीछे आपकी मेहनत है और इस मेहनत को हम बहुत सलाम करते हैं।
0: थैंक यू सो मच।
1: और दूसरा चीज ये है कि आज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आज कुछ टूटी फूटी टेढ़ा मेढ़ा मतलब कहा जा सकता है शायरी बोलना चाहूंगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूंगा।
0: पूछ पूछ। बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल यहाँ पे मंगेश दशमुख जी सुपर सुपर सुपर सॉन्ग के लिए बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं इसकी सुनते हैं।
2: अरजय अमन सर जी, सभी भाई या सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं
0: जी। वेलकम जी आपका भी। और हमारे साथ यानी कि प्यारे प्रमोद भगत जी लिखते हैं, बागेश्वर निषाद जी की पसंद मुझे बहुत ही खुशहत लगी है, उनको दिल से धन्यवाद देते हैं, तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया। और दिलीप कुमार जी लिखते हैं कि नमस्कार, मैं दिलीप कुमार यानी कोलकाता से जी। बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका दिलीप कुमार जी कोलकाता वाले। और साथ ही साथ जी यहाँ पे सवाल आया हुआ है कि ये परी कौन है जी, वो आठवां अजूबा है, मैं आपको कैसे बता दूं कि ये कौन है, मेरी सुंदरता की मूरत है वो। ओके। और यानी कि विष्णुचंद्र जी लिखते हैं कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया जी, तो ये गाना इनको बहुत अच्छा लगा है। और साथ ही साथ मीना जी लिखते हैं वाओ बहुत खूबसूरत गाना है जी, मजा आ गया सुन के। और हुकुम चंद जी लिखते हैं कि नमस्ते अमन सर जी, मैं भी जुड़ गया हूँ जी, जी आपका भी वेलकम करता हूँ मैं। साथ ही साथ हमें रवि महर जी लिखते हैं कि कुछ यादें इस गाने से जुड़ी हैं, क्या बात है। लिखते हैं कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है, इस सॉन्ग की तेरी मोहब्बत ने दिल में मुकाम कर दिया, बेस्ट सीरीज एंड मैंने क्या ही कहें, इस सॉन्ग की जितनी तारीफ करें कमी है। और रेनबो लवर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। लिखते हैं कि तेरी मोहब्बत ने दिल में मकाम कर दिया, गाना सुन के मजा आ गया। और फरमाइश करने वाले भाई साहब को धन्यवाद देते हैं, ये हमारा बिल्कुल इन पसंदीदा गानों में से एक है। और ओके, कोई बात नहीं, फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो मोहम्मद शकील जी का करने वाला हूँ। मोहम्मद शकील जी संग संग।

0: बिल्कुल संग संग चलूंगा मैं, ओ मेरी दुल्हन जी, बिल्कुल। और यहाँ पे अनिल कुमार जी क्या कहते हैं, हरिद्वार वाले सुनते हैं।
1: तेरी मोहब्बत ने दिया, बहुत ही लाजवाब सॉन्ग है मनसर जी, अनिल कुमार हरिद्वार से। सॉन्ग प्ले करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी श्रोताओं की फरमाइश एक से बढ़कर एक आज प्रोग्राम में आने वाली है, बहुत बहुत धन्यवाद है
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि ये टूटे हुए सपनों को मुझ में सजाना आता है, रोते हुए दिल को मुझे मनाना आता है, उसे कह दो हमारे जख्म की फिक्र न करे, हमें दर्द में भी मुस्कुराना आता है। आए है, आए है, क्या बात है। बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए। और हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि मोहम्मद शकील जी की डिमांड, संग संग चलूंगा मैं, लाजवाब नगमा, मजा आ गया सुनकर। और ओके लिखते हैं कि हमारे रेनबो लवर जी लिखते हैं कि संग संग चलूंगा मैं, बन के तेरा सजन, नाइस सॉन्ग सुनने को मिला। गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमन जी को नमस्कार है, और सभी दोस्तों को भी नमस्कार है, गाना बहुत ही प्यारा चल रहा है। और ये ब्रजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं ब्रजेश कुमार जी, और बहुत दिन से आपका इंतजार था, आप हैं बाहर आई। और ये क्या कहते हैं,
2: संग संग चलूंगा मैं, गाना दिमाग से निकल गया,
0: कोई बात नहीं,
2: अच्छा गाना था। और अब टूटा फूटा शायरी, कि प्यार में गलती सिर्फ नहीं थी हीर की,
0: अच्छा।
2: प्यार में गलती नहीं थी सिर्फ हीर की, अमन भैया खाने आइए ना, आज मेरे घर सब्जी बनी है पनीर की।
0: वाह वाह वाह वाह,
2: थैंक यू भैया,
0: क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मैं यानी कि पनीर की सब्जी मुझे बहुत पसंद है, अच्छा लगता है मुझे। ओके जी, फिलहाल यहाँ पे अगला जो डिमांड है, यहाँ पे जो मतलब फीडबैक है, मनीषा शर्मा जी लिखते हैं कि सुपर सुपर सॉन्ग, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, थैंक यू सो मच इस गाने को सुनवाने के लिए। और अरुण मंडा जी लिखते हैं कि संग संग चलूंगा मैं, बन के तेरा सजन, मुझे गाना बहुत ही प्यारा लगा है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना है जी, बिल्कुल इसी बात पर अगला जो डिमांड है खुशबू जी का है, और खुशबू जी सुनना चाहती हैं कभी अलविदा ना कहने का, ये बहुत ही प्यारा गाना, तो सुनवा रहा हूँ, इंजॉय कीजिए। ओके, सॉरी मैंने तो गलत गाना प्ले कर दिया था, शायद ये रहा, मिल गया।

0: और आरजे सोनी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और सर्विस भगत जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
1: और आरजे अमन सर जी, खुशबू जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और आरजे आकांक्षा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत वेलकम है। ब्रजेश कुमार जी लिखते हैं खुशबू जी का डिमांड बहुत ही प्यारा है, मजा आ रहा है सुन सुन के। और राधा कृष्ण गोप लिखते हैं कि इस डिमांड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया खुशबू। और ये क्या कहते हैं भाई, इनकी सुनते हैं।
2: तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी, ये कहने वाली बात थोड़े ना है जी, कहे तुम इतना उदास हो। और टूटा फूटा शायरी में ये बात है कि
0: बोलिए बोलिए,
2: गाना तो मैं ऐसे ही चलाऊंगा लेकिन क्या करूं, गर्मी बहुत है, पहले मैं नहाऊंगा।
0: कोई बात नहीं, नहाते रहिए। और फिलहाल सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। और अभिषेक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और गोविंदा खंडाटे जी जुड़ चुके हैं, आपका भी वेलकम करते हैं। मीना इब्राहिम जी लिखते हैं वाओ बहुत ही खूबसूरत गाना है, इसी बात पर अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो कमल शंकर पांडे जी का सुनना चाहते हैं। आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं, बिल्कुल सच में आपके करीब। एंजॉय कीजिए।

और एक लाइन आया हुआ है कि हमसे जलने वाले भी वाह क्या कमाल करते हैं, इन पीछे पीछे बातें और सामने सलाम करते हैं, वाह वाह वाह क्या बात है। और आगे लिखती है ये कर सितम के मुझ पर भी इस दिल में धड़कन तेरे नाम की होगी, और ख्वाहिश तो अधूरी बहुत ही मगर आखिरी ख्वाहिश तेरे दीदार की होगी। वाह साहिबा।

वेलकम बैक ऑन। बबीता जी लिखते हैं नमस्ते मंसर जी, और बहुत शानदार प्रोग्राम चल रहा है, सभी दोस्तों गाने बहुत ही कमाल कमाल के बज रहे हैं। अच्छा, एम ताहिर जी जुड़ चुके हैं और लिखते हैं अमन खान जी, आपको और कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को मेरा प्यार भरा आदाब। कार्यक्रम बहुत

गाइस देखते हैं कि आपके करीब हम रहते हैं, बहुत बेहतरीन गीत जी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारे नाम इनका कमल शंकर पांडे जी लिखते हैं, कमल जी नमस्कार, और आपने मेरा गाना प्ले कर दिया, आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। साथ ही साथ हमारे नंदलाल जी जुड़ चुके हैं गाजीपुर यूपी से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और राधा कृष्ण को लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा डिमांड है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। गजानंद लिखते हैं कि आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं, गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, बहुत शुक्रिया। एंड अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि शानदार सुपर हिट सॉन्ग के लिए धन्यवाद। इसी बात पर जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ, किनका देखता हूँ। अगला जो डिमांड है हमारे वो रेनबो लवर जी का है, वो सुनना चाहते हैं बहुत ही प्यारा गाना, वादों से नहीं यादों से नहीं बातों से नहीं प्यार मिलता है, महबूब जो देख ले एक नजर तो दिल को करार मिलता है। बिल्कुल।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। बरजेश कुमार लिखते हैं वाह क्या गाना सर जी, दिल गदगद हो गया एकदम सुन के। और साथ ही साथ हमारे यानी प्यारे प्रमोद जी मतलब प्यारे प्रमोद बगाड़ जी कहते हैं कि वादों से नहीं यादों से नहीं बातों से नहीं प्यार मिलता है। महबूब को देख ले एक नजर तो दिल को करार मिलता है। सच में बहुत ही बेहतरीन गीत भी है। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये गाना सुनकर मजा आ गया है। जितेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि अमन जी झक्कास प्रोग्राम चल रहा है। अच्छा थैंक यू सो मच आपका काजल झका जी लिखते बहुत ही प्यारा गाना है। और कमलेश ये यानी कि नाम इनका कमल शंकर पांडे जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। और साथ ही साथ रणवीर लाबर जी लिखते हैं कि अमन सर जी थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। और बिल्कुल

0: सच्ची लाइन है जी, मैंने महसूस कर लिया। और ये क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
1: अमन भैया, ये जो रेनबो लवर जी का गाना है ये बहुत ही बढ़िया है, और रेनबो जी तो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं।
0: अच्छा।
1: और कई जगह ये मिल जाते हैं हमें।
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा।
1: उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस इस गाने के लिए, और प्यार यूं ही बना रहे। और एक बात और है कि आज जहां 90s थीम आपका जो लिख रहा है ना ऐप पे, तो वहां पे आपका जो फिगर है अमन भैया, वो केसरिया कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं आप, बहुत ही मस्त, बहुत ही झक्कास लग रहा है।
0: थैंक यू सो मच। ओके, और अगला जो डिमांड है आरजे आकांक्षा जी का है, और लिखते हैं कि ना नफ, ये स्पेशली उनके यानी किराया साहब जी के लिए ये लाइनें हैं, और लंबी लाइनें हैं आज, यानी ये लव डे पर ये कुछ कहना चाहते हैं। लिखते हैं कि ना आपसे नफरत है, ना ही यानी प्यार से इनकार है, लेकिन बस एक अजीब सा डर है जो आज भी दिल के पार है। आपसे मोहब्बत का इजहार कर दूं तो आपके इनकार का डर लगता है, और चुप रहूं तो दिल बेचैन रहता है, और कह दूं तो आपको खोने का डर लगता है। और कभी आपकी एक झलक का इंतजार था, आज आपकी एक आवाज भी खास लगती है, और आप इन पास हो तो इन वक्त ठहरता जाता है, और दूर हो तो हर घड़ी उदास लगती है। लिखती है आगे, मेरे राजा साहब जी, आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि आपकी मौजूदगी मेरे लिए क्या मायने रखती है। आपसे बात हो जाए तो दिन अच्छा लगता है, और ना बात होती है तो वही दिन कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं, बस आपके साथ को दिल से सजाया है। आप मेरे हो या ना हो, मेरे दिल ने आपको हमेशा अपना ही समझ कर चाहा है। आज लव डे पर बस इतना कहना है, मोहब्बत का मतलब हमेशा इन पा लेना नहीं होता है, और कभी कभी इन किसी दिल से चाहकर उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना ही मोहब्बत होती है। और अगर इन कभी मेरे दिल की आवाज आप तक पहुंच जाए तो समझिएगा राजा साहब, ये कोई शिकायत नहीं, बस एक दिल की वो बात है जो बहुत समय से आपसे कहने को बेकरार है। और स्पेशली आपके लिए मैं गाना प्ले करवा रही हूँ, इंजॉय कीजिए। सुनवा दिया आर्जा का चल। एक लाइन है कि अगर प्यार सच्चा हो तो इंतजार भी खूबसूरत लगता है, और जिसे दिल से चाहे सच में उसका दिल

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो आपको दीवाना बना दे। सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: जय अमन सर जी, आकांक्षा और जय आकांक्षा जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं।
0: वेलकम जी आपका भी। और आत्माराम जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने वंडरफुल, शानदार प्ले हो रहे हैं, मजा आ रहा है सुन सुन के। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग सर जी। और आरिफ सिंधी जी क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं।
2: अस्सलामु अलैकुम अमन सर जी, मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से। मेरे गाने की डिमांड पूरी की आपने और प्ले करके मुझे सुनवाया, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और जो दोस्तों ने फीडबैक दिया उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और कल भी आपने सुनवाया था लेकिन मैं कल कुछ काम में उलझा हुआ था, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। मैं आरिफ सिंधी गुजरात गांधीनगर से। सुनते रहो रेडियो हॉट स्टार आरजे अमन सर जी के साथ, जो दीवाना बना दे।
0: धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि बेहतरीन शायरी के साथ जैसे हीरा निकल रहा है कोयले की खान से, बहुत ही बेहतरीन गाना भी लगा है, मजा आ गया सुन के। और रुबीना नाथ जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम। और लिखते हैं कि ये फरमाइश आरजे आकांक्षा जी की, और उनकी शायरी भी बहुत ही, मतलब क्या ही कहें, सुपर से भी ऊपर, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये कोयले वाला गाना बहुत अच्छा लगा, अच्छा सच में कहा। अनिल कश्यप जी क्या कहते हैं, इनके सुन लेते हैं।
3: मानो कोयला निकल रहा है हीरे की खान से।
0: अच्छा।
3: और अपने आरजे अमन भैया भी
0: आपने उल्टा कह दिया,
3: जिला सिवान से। मनोरंजन करते हैं ये सबका दिलो जान से।
0: अच्छा।
3: और क्या बताऊं,
0: बता दीजिए।
3: ये रहते हैं हमेशा ईमान से।
0: ओहो क्या बात है। और फिलहाल हमें जितेंद्र सिंह जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार डिमांड है, थैंक यू सो मच। और नंदलाल जी लिखते हैं कि आरजे आकांक्षा जी का गाना बहुत लाजवाब लगा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ हमारे ये निकाजल झका जी लिखते हैं कि ये भी गाना बहुत ही प्यारा। अगला जो डिमांड है हमारी आरजे सोनी जी का है, सुनवा रहे हैं। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, और ये गाना मतलब मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तो फिलहाल इंजॉय कीजिए।
4: एक गीत, एक नगमा जिसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आई है, प्यारा सा गीत है, बहुत प्यारा सा नगमा है। ये ऐसा गीत है कि जिसमें कई जिंदगियां बनी है और कई बनती रहेंगी। सो मेनी ऑफ दीज जनरेशन यंगस्टर्स कम एंड टेल मी के मैंने मेरी पत्नी को यही गीत गा के प्रपोज किया था।
0: अच्छा।
4: ये नगमा ऐसा है कि जिसमें जैसे मियाँ बीवी के बीच झगड़े हो जाते हैं।
0: अच्छा,
4: हम सब एक वी आर ऑल इन द सेम बोट।
0: अच्छा,
4: तो ये होता है कि भाई कभी बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, पता चला कि सुबह आप दफ्तर जा रहे हैं और मेम साहब मुंह फुला के बैठी हुई हैं, तो आप परेशान होते हैं। लेकिन ये उसकी रेमेडी ये है कि इस गीत की चंद लाइनें गुनगुना दीजिए।
0: अच्छा अच्छा,
4: आपका काम बन जाएगा।
0: ओह माय गॉड, सच में?
4: एटलीस्ट एक हफ्ते तक तो बन जाएगा, उसके बाद की गारंटी।
0: चलिए अच्छी बात है, फिलहाल मैं ट्राई कर रहा हूँ।
4: मेरे एक बहुत अजीज दोस्त
0: और ये सुंदरता की मुराद जी आपके लिए ही है
4: कि पंकज मैं शादी से पहले भी शेर था और शादी के बाद भी शेर हूँ। तो मैंने कहा भाई आज के जमाने में ऐसी तकदीर वाले बहुत कम लोग हैं, मैंने कहा मुबारक हो। तो हंसते रहते थे हमेशा, कहते थे कि भाई तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा क्या? कह देखो ऐसा है कि तुमने मुझे हमेशा देखा है, शादी से पहले मैं शेर था बिल्कुल। मैंने कहा हाँ बिल्कुल देखा। बोले शादी के बाद भी शेर हूँ, लेकिन फर्क इतना है कि शादी के बाद वाला जो शेर है उसके ऊपर माँ दुर्गा बैठी हुई।
0: ओह माय गॉड,
4: नॉट बिहाइंड नॉट ऑन द साइड।
0: अच्छा अच्छा।
5: चांदी जैसा रंग है,
0: हाय हाय हाय,
5: सोने जैसे बाल,

वेलकम बैक ऑन रेडियो ऑडिट जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी आता है। गजल अंजलि लिखते हैं कि आरजे आकांक्षा जी और आरजे सोनी जी दोनों की पसंद बहुत लाजवाब, सुनकर मजा आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दोनों को। और हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ी जी लिखते हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, बहुत ही बेहतरीन गाना सुनने को मिला, मजा आया और सुनकर अच्छा लगा। फिर अगला हमारे दोस्त क्या कहते हैं, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है मेरा। हाँ, और यानी कि काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और रणवीर सिंह जेठालाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं मुरादाबाद यूपी से, तो बहुत बहुत वेलकम है भाई। रणवीर सिंह जेठालाल जी लिखते हैं कि गाना मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। आर्य सिंधे जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है और सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आर्य सोनी जी। ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि सुपर डुपर हिट सॉन्ग, मूड फ्रेश हो गया इस गाने को सुनकर, सच में कहा। रनबो यानी लवर जी लिखते हैं कि आरजे सोनी जी की पसंद अच्छी है, लेकिन ये बताइए सोनी जी यानी कि किसका रंग चांदी जैसा है और सोने जैसा बाल। अच्छा, अरे उन्हीं का है ना, आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं। और यानी पूजा भास्कर जी लिखते हैं कि यानी कि तुमसे मिली मोहब्बत को मैं क्या नाम दूं, और तुम्हें देखूं तो दिल को सुकून दूं या तुम्हें अपना नसीब कहूं, और तुम्हारी मुस्कान पर हर एक बार दिल हार जाती हूं, और तुम्हारी हर और तुम्हारी एक झलक पर ये दिल फिर से यानी प्यार कर बैठता है, और तुम वो ख्वाहिश हो जिसे मैं हर रोज जीना चाहती हूँ, और तुम वो एहसास हो जिसे मैं हर पल महसूस करना चाहती हूँ। दुनिया से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हर जन्म में तुम्हारा साथ चाहिए और हर जन्म में तुमसे ही मोहब्बत चाहिए। हैप्पी लव डे। ओ थैंक यू सो मच इतना प्यारा मैसेज के लिए। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि वाओ क्या सुपर पसंद चल रही है, थैंक यू सो मच। एंड हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि चांदी जैसा रंग है तेरा, लिखते हैं कि वैसे तो इन चांदी यानी कि पवित्रता और शीतलता का इन प्रतीक है, लेकिन इसकी इन अदा इन दिनों बड़ी इन कातिल है, और चांदी तो एक ऐसी छैल छबीली हो गई कि हाथ में आने का नाम ही नहीं ले रही है, बस भाव खाए जा रही है। और कातिल सिपाही ने लिखा है कि चांदी जैसा रंग और सोने जैसे बाल, एक दो ही धनवान है गोरी बाकी सब गंगा। लेकिन ये क्या लिखते वक्त यानी कि कातिल ने ये सोचा हुआ कि चांदी जैसा इतनी दिन कातिल हो जाएगी। शायर ने लिखा, हर आंगन में आए यानी कि तेरे रूप की धूल, और छैल छबीली रानी थोड़ा घूंघट और निकाल, और मजा देखिए इस गोरी ने घूंघट ऐसा निकाला कि दुनिया क्या उठी है, हाय रे चांदी। क्या लिखा है आपने सच में प्रमोद बगाड़ी जी, मजा आ गया। और शिल्पा बहन लिखती है कि चांदी जैसा रंग वाला गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ गजानन सुरकार जी के पूरे ग्रुप का, इंजॉय कीजिए। इसके बाद हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ी जी का गाना प्ले होगा।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और बहुत सारे फीडबैक आ चुके हैं हमारे। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि रेडियो हॉटस्टार की महफिल में पंकज उदास जी की गजल को सुनकर मजा आ गया है, महफिल में रौनक आ गई। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। और हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि गजल सरकार जी के ग्रुप की डिमांड बेहतरीन लगी है, वो बलम केसरिया। और शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि वो बलम केसरिया गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। और अनिल मेहता जी लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही प्यारा गाना है। और साथ ही साथ ब्रजेश कुमार जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब डिमांड है, दिल खुश हो गया भाई इस गाने को सुनकर। साथ ही साथ हमारे गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अमर जी को प्यार भरा नमस्कार है, गाना प्ले करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और काजल जगा जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिल रहा है। मीना जी लिखते हैं वाओ वाओ वाओ, दिल खुश हो गया, दिलकश नगमा सुनकर। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त गजानंद सुलकार जी के ग्रुप की डिमांड बहुत ही प्यारी लगी है। और हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड दोस्त गजानंद सुलकार जी की डिमांड मतलब बहुत ही प्यारी लगी है। इसी बात पर जो डिमांड है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी का है, सुनना चाहते हैं, आएगी।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट हिस्सा जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सी दोस्तों के फीडबैक आ चुके हैं। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना भी बहुत लाजवाब है, थैंक यू फॉर दिस सॉन्ग डिमांड करने के लिए। और ज्योति जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने सुपर लाजवाब चल रहे हैं। जी थैंक यू सो मच, आपने फीडबैक दिया। और हमारे प्यारे प्रमोद बगार जी लिखते हैं कि हमारी पसंद का गीत सुनाने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। ओके जी, वेलकम है आपका भी। और ये कहते हैं, क्या कहते हैं
1: अमन सर जी, जब से रेडियो हॉट स्टार शुरू हुआ था तब हमें इस रेडियो के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी।
0: अच्छा अच्छा।
1: लेकिन सभी जानकारी हमें प्रमोद बगाड़े इन्होंने दे थी, इसलिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें आपको आपके रेडियो हॉट स्टार को जुड़ाया और उन्होंने आपके रेडियो हॉट स्टार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है सर।
0: जी जी। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मतलब यानी कि महाराष्ट्र से जुड़ने वाले हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़े ही जी थे, और सबसे पहले वही वहाँ से जुड़े हैं, और उसके बाद से सभी दोस्त धीरे धीरे आए और बहुत दोस्त आए भी और चले भी गए। लेकिन अभी यानी कुछ ही दोस्त हैं जो अभी यहाँ पे बचे हुए हैं, जैसे कि यानी प्यारे प्रमोद बगाड़े जी हैं हमारे, यानी के गजानन सलोकार जी हैं, आत्माराम जी हैं और मिसाल अंगद जी हैं। बाकी लोग को तो यानी दिखते भी नहीं है, पता नहीं सब कहाँ गायब हो गए, ऐसे गायब हुए जैसे कि मैं नहीं बता सकता। और ओके जी, फिलहाल यहाँ पे अगला जो फीडबैक है, ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत डिमांड है जी, मजा आ गया सुन के ना। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं,
2: अरजय अमान सर जी, गजानन सलोकार जी का पूरा ग्रुप का भाई अपने गाने में शामिल किए हैं, इसके बाद प्रमोद बगाड़े जी भी अपने गाने में शामिल किए हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका। और गजानन जी लिखते हैं आदरणीय अमन जी को और यानी कि प्रमोद बगाड़े जी के पसंद बहुत ही अच्छी लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतना लाजवाब गाना सुनवाने के लिए उनको। और काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना है। और आमना खान जी जुड़ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी आमना खान जी। और ये फीडबैक सुनते हैं,
3: आरजे सोनी जी का फरमाइश किया हुआ गाना जो पंकज उधास के आवाज़ में था काफ़ी अच्छा लगा, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ऐसे गाने के लिए। और अभी जो गाना चल रहा है, आएगी बरसात कहाँ जाएंगे, तो जाना कहाँ है, अपने घर जाना है, आराम करना है, और वायरल फीवर चल रहा है उससे बचना है।
0: जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और रुबीना नाज लिखते हैं कि नाइस फरमाइश जी, बिल्कुल। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही बेहतरीन गाना चल रहा है। और मीना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। और अजय कुंजी लिखते हैं कि सदाबहार गाना है जी, बिल्कुल। अगला जो डिमांड है शाहिद अंसारी जी का है, सुनना चाहते हैं, ये प्यार करेगी तो एंजॉय कीजिए इस गाने।
4: प्यार कर ले ना रे बाबा ना, इकरार कर ले ना रे बाबा ना।
0: ओ, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ था, मैंने देखा नहीं था।

0: वेलकम बैक और फीडबैक भी मेरे पास आ चुका है। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि यानी प्रमोद बगाड़ जी की पसंद औसम लगी है। और हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं शाही जी की पसंद और उनके इस गीत का उन्होंने सिलेक्शन किया, चयन किया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये फीडबैक सुनते हैं।
1: अमन भैया एक बात पूछना था
0: जी जी,
1: कि आज से जो फोन कॉल्स पे आधारित प्रोग्राम का शुरुआत हुआ है, जिसमें हम जब कॉल लगा रहे थे तो कॉल एक रिंग होता था और फिर कॉल ट्रांसफर लिख के और बीजी बताने लग रहा था, तो ऐसा कुछ क्यों हो रहा था? थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि मैं आगे से जब जुड़ूं तो मेरा कॉल लगे। मैं पूरे एक घंटे ट्राई किया लेकिन ऐसा ही हुआ हमेशा।
0: जी बिल्कुल,
1: तो फिर इसके बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने ऐसा सवाल किया। एक्चुअली देखिए, जब यानी कि कॉल फॉरवर्ड होता है तो यहाँ से तो कॉल फॉरवर्ड होता है तो हमारे पास यानी कॉल आता है, तो वो यानी कॉल जिस नंबर पे फॉरवर्ड किया गया है वहाँ जाता है। हमारे पास से तो यहाँ पे रिंग होता है, यानी कि आपका रिंग आया मेरे पास, बात सही है, लेकिन जहाँ पे कॉल जा रहा है उनका नंबर उस समय बिजी होता है, यानी कि किसी अन्य से बात हो रही है, इसलिए एक रिंग होने के बाद वो ऑटोमेटिक आपको बिजी बताता है और फोन आपका कट जाता है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपको लगातार ये ट्राई करना है, क्योंकि उसमें जब ट्राई कीजिएगा तभी जाकर आप सक्सेस हो पाइएगा, क्योंकि बहुत से दोस्त यानी सक्सेस हुए हैं और उनके गाने की जो मतलब जितने भी लोगों ने आज इन्हें कॉल किया है उनके गाने की रिकॉर्डिंग मतलब अगले दिन आपको सुनने को मिलेगी 11 बजे से, जरूर सुनेंगे आप प्लीज़। और अगला जो डिमांड है मेरे पास, मैं इन्हें प्ले करने वाला हूँ, और ये गाना है हमारे किन का, इन रवि मोहड़े जी का है। तो रवि मोहड़े जी, इंजॉय कीजिए अपने गाने को, इन चाहा है तुम्हें चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे, इंजॉय कीजिए।

0: सांसों में बस जाएंगे। और यानी प्रमोद कुमार लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सर रवि महर्जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। और यहाँ पे अजय कुछ लिखते हैं सुपर सॉन्ग है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि आज का गाना बहुत ही प्यारा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि जब जब जन्नत ही तेरा आंचल है तो सुकून कहीं और क्यों ढूंढे, और तेरी बाहों में मिलती है दुनिया सारी तो बाहर कहीं और क्यों ढूंढे, और जो मैं रूठ जाऊं तो तुम मुझे मना लेना और कुछ ना करना बस गले लगा लेना। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या बात है ये। फिर में
1: अर्जय अमन सर जी, रवि मुहाली जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर,
0: वेलकम जी आपको। और हमारे प्यारे प्रमोद बगाज जी लिखते हैं कि रवि महर जी की पसंद बेहतरीन लगी है, ओके। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि रवि महर जी का डिमांड बहुत ही शानदार, ओके जी। और ब्रजेश कुमार लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब सॉन्ग चल रहा है, दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर। और यहाँ पे शिल्पा बेन जी लिखते हैं कि ये चाहा है कि चाह है तो चाहेंगे, गाना बहुत ही बढ़िया लगा है, धन्यवाद देते हैं। और ये फिर से सुनते हैं,
2: चाह है चाहेंगे हमारे दोस्त रवि मोहाड़ी, शुक्रिया सर इतने अच्छे गीत लाने के लिए, आत्माराम पाटिल,
0: धन्यवाद देते हैं आपको भी। और गजानंद जी लिखते हैं आदरणीय दोस्त रवि मोहाड़ी जी की डिमांड बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत डिमांड है, मुझे बहुत पसंद है, धन्यवाद देते हैं। और फिलहाल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ वो है नंदलाल यादव जी, गाजीपुर यूपी से, सुनना चाहते हैं इतना प्यारा गाना, एंजॉय कीजिए। आई होप कि आपका एक गाना यही हो, क्योंकि मुझे लगा यही।
3: Listen and enjoy Melody Queen Shreya Ghoshal Great Rare Songs by SG Ahmed Channel. Subscribe to SG Ahmed Channel and enjoy great melody Shreya Ghoshal. Thank you.

0: और हमारे यानी कि प्रमोद यानी कुमार लिखते हैं कि नंदलाल जी के पसंद लाजवाब बेहतरीन। जी बिल्कुल, ये तो गाना लाजवाब हाई, बहुत ही प्यारा ये फीडबैक।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अमन सर जी हमारा गाना प्ले करने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। और सभी दोस्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया हमारा गाना पसंद करने के लिए। मैं रवि मोहाड़े बैतूल मध्य प्रदेश से।
0: वेलकम जी आपका भी। और सर्वेश भगत जी,
2: आरजे अमन सर जी, नंदलाल यादव जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और काजल धक्का जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है, धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि सनम हम तुमसे प्यार करते रहेंगे, बेहतरीन गीत जी बिल्कुल। और अजय कुछ जी लिखते हैं कि ये गाना मैंने पहली बार सुना है, मजा आ गया सुन के जी। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि नंदलाल जी के पसंद बहुत ही प्यारी डिमांड है। और साथ ही साथ गजानंद जी लिखते हैं कि नंदलाल जी के पसंद बहुत बेहतरीन, लाजवाब लाजवाब मजा आ गया सुन के। दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि जब आता है बुखार और होती है तबीयत खराब, छूट जाता है खाना पीना और लगे सब बेकार, और डॉक्टर की गोली लेना ही पड़ता है सुबह और शाम, लेकिन एक चीज नहीं छूटती वह है रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना है। अच्छा ऐसा है क्या। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि सनम हम तुमसे प्यार करते रहे, गाना मुझे बहुत ही प्यार लगा है। नंदलाल जी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना प्ले करने के लिए, अच्छा यही गाना था समझ गया। और मीना कुमारी जी लिखते हैं कि दर्द की शाम हो या सुख का सवेरा हो, और सब कुछ स्वीकार है अगर साथ तेरा हो। वाह वाह। मीना जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना है जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मीना इब्राहिम जी। और ये फीडबैक,
3: गुड इवनिंग।
0: यस सर, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, ओके सो प्लीज रीसेंड। ओके अगला जो डिमांड है हमारे जाकिर खान जी का है, मेरी निगाह में क्या बनके आप रहते हो, बिल्कुल मेरी जान बनके रहते हो ना।

0: की पसंद जबरदस्त लगी है बिल्कुल। आज हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी यानी कि लगे हुए लगातार, आज तो लग रहा है कि आज ये विनर बनेगा जरूर। ओके जी, ये फीडबैक।
1: और जय अमान सर जी, जाकिर खान जी अपने गाने में शामिल किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू
0: सो मच, आपके भी वेलकम है। और साथ ही साथ हमारे निकला जी क्या कहते हैं, एक बार फिर से इनका ऑडियो पहुंचा है मेरे पास, सुनते हैं।
2: गुड इवनिंग आपके अंकल,
0: गुड इवनिंग,
2: व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग एंड वंडरफुल प्रोग्राम,
0: थैंक यू सो मच।
2: I'm really enjoying, I'm driving my car.
0: Okay.
2: Just right. I'm so sorry.
0: No problem, sir. And यहाँ पे आर के रवि जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं कि हमने भी चाहा था कि एक इन परी हमारी जिंदगी में आए, जिसकी एक मुस्कान से ही हमारा दिन बन जाए, और घर वालों से छुप छुपा कर हमने भी उसे मैसेज ठोके, लेकिन किस्मत ऐसी फूटी कि मैसेज गलत नंबर पर जा पहुंचे। ओ माई गॉड, बाप ने देखा फोन तो पूछा ये कौन सा रिश्ता निभा रहा है, हम बोले पापा ये तो बस देश का यूथ आगे बढ़ा रहा है। फिर क्या था, एक चप्पल आई इन बाएं से, एक इन बेलन आया दाएं से, और हमारी आश की हवा हो गई खिड़की के रास्ते से। अब तो आलम यह है कि इश्क विश्क से हम दूरी बनाए रखते हैं, और शादी के नाम से अपने कान में रुई दबाए रखते हैं, और क्योंकि यानी प्यार में तो बस वादे और कसमों के कसौटी मिलते हैं। और सच मानो दोस्तों, असली सुकून तो रात को रेडियो हॉटस्टार को इन सुनने से ही मिलते हैं। अच्छा, ये आपने लिखा हम यानी अपने किरण जी के लिए है ना, मुझे पता है। फिलहाल मंगेश दसमुख जी लिखते हैं कि गाना सुपर डुपर हिट चल रहा है, मज़ा आ रहा है, सुन के मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं कि दोस्त जाकिर खान जी की डिमांड बहुत ही प्यारी थी। और विष्णुचंद्र जी लिखते हैं कि लाजवाब गाना है, सुनने को मिला, मज़ा आ गया सुन के, बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। और बागेश्वर निषाद जी लिखते हैं कि मेरी निगाह में क्या बन के आप रहते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है। और यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि जाकिर खान जी के पसंद औसम लग गया, थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है ज्योति खटवड़े जी का, ज्योति खटवड़े जी एंजॉय कीजिए अपने प्यारे से डिमांड को।
3: हेलो,
4: हे
3: नील, मैं इस ट्रिप के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ।
4: यार आई एम रियली सॉरी ऐश्वर्या, मैं इस ट्रिप के लिए नहीं आ पाऊंगा।
3: क्यों?
4: लास्ट मिनट बहुत अर्जेंट मीटिंग आ गई है।
3: एनीवे मैं अकेली चली जाऊंगी।
4: हेलो, लिसन,
3: बाय,
4: लिसन।

और हमारे यानी के यहाँ पे जो यहाँ पे लाइव चैट जो है उसमें मतलब जन्माष्टमी के बारे में यानी के चर्चाएं हो रही है। तो मैं बता दूं कि आने वाला यानी के 4 सितंबर यानी के ये 2026 मतलब यानी जन्माष्टमी है, और यानी कि यही यानी कि आपका मतलब 4 सितंबर 1996 में भी मतलब यानी कि जन्माष्टमी था, और वो भी आज फिर यानी कि 26 में भी यानी कि 4 सितंबर को ही जन्माष्टमी पड़ा है। मैंने इतने दिनों के बाद ये रिपीट हो रहा है, बहुत बड़ी बात है। क्या बात है,

0: आरजे अमन सर जी, ज्योति घटवटे जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
1: वेलकम जी। और मंगेश दशमुख जी लिखते हैं, सभी दोस्तों की पसंद बहुत ही सुपर डिमांड चल रही है। काजल झका जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, धन्यवाद देते हैं। इसी बात पर अगला जो डिमांड है मैं प्ले करने वाला हूँ, और ये डिमांड है किनका मैं जरा सा देख लूँ, इन तीन दोस्तों का, यानी कि सर्वेश भगत जी हैं और अशोक देशमुख जी हैं और आत्माराम पाटिल जी हैं, तो इन सभी की डिमांड सुनवाते हैं।
2: नमस्कार अमन सर।
1: नमस्कार।
2: मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख। आज का थीम है स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल, तो मुझे एक गीत सुनना है। फिल्म का नाम है फर्स्ट लव लेटर और गाने का बोल है दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया।
1: अच्छा।
2: ये गीत सबसे पहले आपको और आपकी सुंदरता की मूरत को और जितने भी हॉट स्टार सुनने वाले श्रोता है उन सबको ये गीत सुनवा दीजिए सर, धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। और इसी बात पर अगला जो डिमांड, मतलब इसी डिमांड में शामिल हो रहे हैं सर्वेश भगत जी।
0: आरजे अमन सर जी, शुभ संध्या, नमस्कार, नमस्ते जी।
1: नमस्ते
0: आज
1: जी।
0: हमारा फरमाइश का फिल्म है फर्स्ट लव लेटर, गाने का बोल है दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया।
1: अच्छा।
0: और स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद। हम सर्वेश भगत हजरा जंदाहा जिला वैशाली बिहार से बोल रहे हैं। हमारा परिवार सतीश भगत, हेमंत भगत, वर्षेश्वर भगत, अनंत शेखर, प्रकाश, सोनी कुमारी, मुन कुमारी, सूरज कुमार, मनोज जायसवाल, अशोक देशमुख भाई जी, आत्माराम पाटिल जी, सैयद यूनुस जी, आर जे अमन सर जी, सुंदरता की मूरत जी, आर जे आकांक्षा जी, आर जे वंशिका जी, आर जे रत्ना जी, आर जे एम एस परमार जी, आर जे सोनी जी, और सभी आर जे और सभी भाई और सभी बहन और सभी लिसनर्स में शामिल है, सभी को सुना दीजिएगा। जयराम जी के अमन सर जी
1: जी, धन्यवाद देते हैं आपका भी। और इसी बात पर अगला जो डिमांड है, कहाँ गया, मतलब इसमें शामिल हो रहे हैं आत्माराम पाटिल जी भी। आत्माराम जी का ऑडियो है कि नहीं, जरा मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, आया हुआ है ऑडियो।
3: हेलो प्यारे आरजे अमन खान सर जी, 90 स्पेशल में आज एक गाना सुना दो सर।
1: ओके।
3: मूवी का नाम है फर्स्ट लव लेटर, सिंगर है SP बालसुब्रमण्यम और लता मंगेशकर, और गीत के बोले सर दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया। यह गाना मैं सबसे पहले आपको सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी और सभी को सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुना दो। मैं आत्माराम पाटिल, निहा बुल्ढाना,
1: सुनवा दिया। इंजॉय कीजिए आप सभी के पसंद पे ये प्यारा सा नगमा जो मुझे बेहद पसंद है। सच में इस गाने को सुनकर बहुत मजा आता है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पे लिखते हैं इन विष्णु जी सभी गाने बहुत ही प्यारे चल रहे हैं। ओके और उनके पास है सर ये क्या कहते हैं
1: आरजे अमन सर जी, हम तीन भाई का फरमाइश आप शामिल कर दिए, आपको लाख लाख धन्यवाद अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए और हम तीनों भाई का गाना सुनाने के लिए आपको बहुत लाख लाख धन्यवाद। थैंक
0: वेलकम जी आपका भी। और जाकिर जी लिखते हैं कि अंदाजे अंदाजे यानी प्यार तुम्हारी अदा है और दूर हो हमसे तुम्हारी खता है, दिल में बसी है इन प्यारी सी एक तस्वीर तुम्हारी जिसके नीचे आई मिस यू लिखा है। अच्छा जी, हम तो कहते हैं जी बिल्कुल वही कहा। और ज्योति जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी मेरा गाना सुनवाने के लिए, दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए, पसंद करने के लिए। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि धन्यवाद अमन सर जी, आपने हमारा फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत शुक्रिया जी। और आत्माराम जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: वेरी वेरी थैंक यू अमन सर जी, हमारे तीनों भाई का सॉन्ग प्ले करने के लिए शुक्रिया। आत्माराम पटेल थैंक यू
0: लिहा बुल्ढाणा महाराष्ट्र से। ओके मुझे पता है। और प्यारे परमल बगाड़ जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त लग रहा है समन सर जी, सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं और शायद किसी का कॉल आ रहा है, मैं अभी रिसीव नहीं कर सकता। और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया, बहुत बढ़िया गाना है जी। और रवि मोहन जी क्या कहते हैं इनकी सुन लेते हैं।
3: बहुत ही सुपर लाजवाब सॉन्ग हमारे चारों मित्रों का, मजा आ गया। आदरणीय सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, आत्माराम पटेल जी और एक नाम भूल गया हूँ मैं,
0: कोई बात
3: बहुत ही लाजवाब बेहतरीन सॉन्ग, मजा आ गया। और गाने में याद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम जी आपका भी। और यहाँ पे मीना कुमार जी लिखते हैं कि यानी कि तुम्हें ये याद रखने का मेरा अंदाज थोड़ा निराला है, मैंने तुम्हें इन तस्वीरों में नहीं अपने इन शब्दों में संभाला है, और कभी लिख दो लाइन की शायरी तुम पर तो कभी तुम्हारी यादों में पूरा खाली पन्ना ही भर डाला है। वाह वाह वाह वाह क्या बात है। और ये यानी कि प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि रेस्पेक्टेड सर्वेश भगत जी, अशोक देशमुख जी, आत्माराम जी, सभी की डिमांड लाजवाब, थैंक यू सो मच। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये सभी गाने बहुत ही प्यारे लगे हैं, जिन तीनों दोस्तों की डिमांड शानदार लगी है। ओके जी। और भाई कोई मुझे कॉल कर रहे भाई। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि ये ग्रुप डिमांड बहुत ही लाजवाब था जी, धन्यवाद देते हैं। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय अशोक देशमुख जी, सरोज भगत जी, सभी की पसंद बहुत ही शानदार लगी, शुक्रिया। निकला जी क्या कहते हैं। निकला जी आपका अभी ऑडियो तो शो नहीं कर रहा है, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा इसको एक बार प्ले करने की। और शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं शर्मा जी। ये लिखते हैं कि मेरा लाइव चैट लॉगिन नहीं हो रहा है अभी अभी, जो आपका आईडी पासवर्ड है आपका इसी से खुलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको ये पासवर्ड को रिसेट करके दे रहा हूँ, आपका पासवर्ड मैं भेज रहा हूँ, आप वहाँ से खोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो शर्मा जी आपका जो पासवर्ड है मैंने आपको भेज दिया है, आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। ओके तो आप अपना पासवर्ड लॉगिन करके चेक कर लीजिए। फिलहाल अगला जो डिमांड है वो किनका है, तो वो किनका है मैं बता देता हूँ फिलहाल। ओके आते हैं।
4: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: ओके जी अगला जो डिमांड है वो सुनीता गोप जी का है। सुनीता गोप जी सुनना चाहती हैं ये प्यारा सा।

0: बिल्कुल, लेकिन अलग मैं गाना डिमांड करूंगा, सॉरी यानी प्ले करूंगा, लेकिन मेरे पास बहुत सारे डिमांड और फीडबैक आए हुए हैं, पहले शामिल करता हूँ। और यहाँ पे लिखते हैं इन पूजा भास्कर जी के, यानी कि कोई तो करता होगा मेरी इनकमी पूरे, और कोई तो रखता होगा तुझे मुझसे भी ज्यादा करीब, मैंने तो तुझे अपनी दुनिया समझ लिया था, शायद किसी और की दुनिया बनकर तू भी आज होगा बहुत खुश। वाह वाह क्या बात है। और इनके बाद यहाँ पे ये फिर
1: आरजे अमन सर जी, सुनीता गोप जी अपने गाने में शामिल किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आपको भी धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सर।
0: वेलकम जी। और इसमें चंद्र जी लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और आत्मारान जी लिखते हैं कि बहुत बेहतरीन ये सॉन्ग सुनने को मिला, यानी कि सुनीता गोप सिस्टर जी आपका। और हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि ऐप बंद हो गया क्या, सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं सर जी, ऐप तो बंद नहीं हुआ है, अगर हो सकता है कि एक बार अगर ऑफ हो गया होगा तो ऑफ करके स्टॉप करके एक बार फिर से प्ले कर दीजिए, हो जाएगा मेरे ख्याल से। और जाकिर जी लिखते हैं कि सुनीता गोप जी की डिमांड बहुत ही शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं इस जाने के लिए भी। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि ये सॉन्ग मैंने पहली बार सुना है, अच्छा लगा बहुत। और सुनीता गोप जी लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए। गजानंद जी लिखते हैं कि ये सुनीता गोप जी की डिमांड बहुत ही अच्छा लगा, मजा आ गया सुन के। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे इदरिस हियाल जी, बहुत बहुत वेलकम करते हैं इदरिस हियाल जी। अमन सर जी आपका प्रोग्राम हमेशा अच्छा यानी ब्यूटीफुल होता है, वो थैंक यू सो मच। फिलहाल अगला जो डिमांड है, अच्छा यहाँ पे मीना जी लिखते हैं कि ओके मैं कोशिश करूंगा, ठीक है जी। फिलहाल अगला जो डिमांड है सुनवाते हैं।
2: अमन जी नमस्कार, 19 स्पेशल में आज मेरा जो गाना है वो है फिल्म दिल क्या करे, जिसके सिंगर और सुमधुर आवाज़ दी है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, और गीत के बोल हैं दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके दिल लगा लिया। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा मध्य प्रदेश से, धन्यवाद।
0: ओके जी, तो एंजॉय कीजिए दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार कर।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट और जो आपको दीवाना बना दे। बहुत सारे फीडबैक मिल मेरे पास आंसू का निशान रहे बोले लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा गाना चल रहा है। और मीना जी लिखते हैं कि मैं चाहूं भी तो शायद ना लिख पाऊं उन लफ्जों को जिन्हें पढ़कर तुम जान जाओ कि मुझे कितना प्यार है और तुम्हारा और दिल से तुम्हारा ख्याल जाता नहीं और तुम्हारे सिवा कोई और याद आता नहीं। वाह वाह क्या बात है। और प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि दीपक कुमार गायकवाड़ जी की पसंद अच्छी लगी है, बेहतरीन पसंद सुनने को मिला, मजा आ गया सुन के। और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, ये गाना मुझे अच्छा लगा है। और ये लिखती हैं कि दिल लगा लिया मैंने रेडियो हॉट स्टार से, बहुत बहुत बढ़िया गाना लगा मुझे, मजा आ गया सुन के। और गजानंद जी लिखते हैं कि दिल लगा लिया वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया इस गाने के लिए भी। आत्माराम जी क्या कहते हैं?
1: दीपक गायकवाड़ जी सचमुच आपका गाना बहुत ही सुपर डुपर, ऐसा गाना सुन के मन खुश हो गया। मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
0: वेलकम जी आपका भी। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी,
2: अमन जी मेरा गाना बजाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सभी सुनने वालों का भी शुक्रिया। मैं दीपक गायकवाड़ सिवनी मालवा से।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और हमारे यानी कि इदरीसी हियाल जी लिखते हैं, अमन जी वाकई गाने पर चार चांद लगा दिया इन प्रोग्राम में, बहुत बढ़िया, वाह वाह क्या बात है। और मीना जी लिखते हैं कि अच्छा ओके। और यहाँ पे मीना इब्राहिम जी लिखते हैं कि बहुत ही ये प्यारा गाना है, दिल खुश हो गया सुनकर, मजा आ गया। ओके जी थोड़ा सा डांसिंग करते हैं और जस्ट चिल करते हैं एम ताहिर जी के गाने पर, सुनवाते हैं ये पसंद, इंजॉय कीजिए। ये सुनना चाहते हैं एम ताहिर जी, इंजॉय कीजिए।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और हमारे इन प्रमोद कुमार लिखते हैं कि एकदम मस्त चॉइस है जी बिल्कुल। और हमारे इनके प्यारे प्रमोद बगाड़ी जी लिखते हैं कि म्यूजिक से ये ज्यादा मन सरोवर होता हुआ मस्ती भरा सॉन्ग जी, अगला भी बहुत अच्छा लगेगा। और शिल्पा बेन लिखते हैं जस्ट चिल चिल, यह क्या गाना है, दिल खुश हो गया इस गाने को सुनकर। और हमारे इद्रिस हियाल जी लिखते हैं कि अमन जी हमारा पसंदीदा गाना अच्छा जी ऐसा है क्या, कौन सा गाना भाई। और लिखते हैं कि एम ए ताहिर जी का गाना बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पसंद ब्यूटीफुल लगा है। और यानी कि प्यारे प्रमोद जी लिखते हैं कि यानी कि कभी कभी इन पुरानी बातें याद आती हैं, दोस्तों के संग दिन बिताए वो हंसी पल वो रुला जाते हैं। और सच्ची दोस्ती वो होती है जहाँ यानी कि गालियाँ भी वही यानी प्यार भरी लगती हैं, और तू है तो हर राह आसान लगती है, और तेरी दोस्ती ही मेरी पहचान बनती है। अगला जो डिमांड है वो संदीप सुतार जी का है। तो संदीप सुतार जी भाई यानी कि ये तो मतलब यानी कि फ्रेम जाल में फंस गया, एंजॉय कीजिए।

एक्चुअली भाई यानी कि इदरीस जी, आपने जो अपना स्पेलिंग लिखा है अपने प्रोफाइल में, मैं उसी को पढ़ के ले रहा हूँ। अब मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा आपका स्पेलिंग, क्योंकि आपका नाम है इदरीस हिलाल, लेकिन आपने वहाँ पे लिखा है इदरीस हियाल, तो मैं क्या कर सकता हूँ। आपने जो लिखा है मैं वही आपके प्रोफाइल को देख कर पढ़ रहा हूँ। ओके ठीक है, मैं आपके प्रोफाइल को ठीक कर देता हूँ। इदरीस यानी कि हियाल को मैं मतलब इदरीस हिलाल लिख देता हूँ। आप भी देख सकते हैं आपने क्या लिखा है।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार, जो दीवाना बनाता है। और मीना जी लिखते हैं कि सर्दियों की धूप सी राहत हो तुम, और मेरे लिए चाय के कप की चाहत हो तुम, और गुजरते हैं यूं तो लम्हे तमाम, लेकिन सुकून भरे लम्हों की हसरत हो तुम। वाह क्या बात है, कितना शायरी लिखा है अपने भाई। और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये प्रेम जाल में फंस गया गाना मुझे अच्छा लगा है। और प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि प्रेम जाल में फंस गई मैं तो ये कांटे के टक्कर लगते हैं जी बिल्कुल। और हमारे यानी कि इधर से हिलाल जी लिखते हैं कि जिस देश में गंगा रहता है, वाकई गाना बहुत अच्छा, मूवी भी बहुत अच्छी है। और निशांत राय बोल लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग चल रहा है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है हमारे यानी कि प्रमोद कुमार जी का है, तो प्रमोद कुमार जी सुनना चाहते हैं ये गाना, एंजॉय कीजिए। ओ माय गॉड, डाउनलोड ही नहीं हुआ इनका गाना।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से, और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
0: बिल्कुल,
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, और सुन रहे हैं स्टार 90s एंड न्यू स्पेशल शो आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार बॉलीवुड मिक्स मस्ती में सुनिए सभी तरह के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से, और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते, बहुत सारे फीडबैक भी मेरे पास आ चुके हैं और यहाँ पे शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि बहुत लाजवाब गाना है जी, धन्यवाद देते हैं। और अनिल कुमार जी लिखते हैं कि जन्माष्टमी की जानकारी के लिए थैंक यू सो मच, 4 सितंबर 1996 और अब यानी कि 4 सितंबर 2026। जी जी बिल्कुल, आपने आपको मैंने सही जानकारी दी है, यानी 1996 में भी यानी 4 सितंबर ही था और 2026 में भी 4 सितंबर ही है। ओके, और हमारे प्यारे प्रमोद बगाज लिखते हैं कि नितिन मुकेश की आवाज़ गजब की है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि यानी कि प्रमोद जी की डिमांड भी शानदार लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको भी। और हमारे प्रमोद यानी कि कुमार लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद अमन जी गाना प्ले करने के लिए। विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि ये गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा है। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुन के। और कभी कभी नेट इतना स्लो हो जा रहा है कि मैं पीछे जा नहीं पा रहा हूँ मैसेज खोलने के बाद। ओके, और दीपक कुमार गायकवाड़ लिखते हैं कि देश और दुनिया कुसुरों के संघर्ष में जोड़ रहा है रेडियो हॉट स्टार, यहाँ मेरा तेरा, और जब गाना बहता है तो बन जाता है सबका मिल सुर से मिला सुर तेरा मेरा हमारा। अच्छा ओके, और हमारे इद्रिस हिलाल जी लिखते हैं कि ये नितिन मुकेश की आवाज़ में बहुत खूबसूरत गाना है। जी बिल्कुल, अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो यानी कि कायनात जी का है, तो कायनात जी इंजॉय कीजिए।

बिल्कुल। और ये गाना भाई यानी कि पंजाबी तरका सुनने को मिल गया, मजा आ गया सुनने। गजानन जी लिखते हैं कि यानी प्रेम जाल में फंस गया वाला गाना शानदार लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यानी कि प्यारे प्रमोद बगाज जी लेते हैं कि कैनाज जी के पसंद जबरदस्त लगी है, ओके जी। और मीना जी लेते हैं कि अच्छा आपका भी गाना मैं सुनाऊंगा जरूर, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल अगला जो डिमांड में प्ले करने वाला हूँ वो ये महक जी का है। महक जी इंजॉय कीजिए।

0: वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बनाते हैं, बहुत ही प्यारा डिमांड कर सकते हैं और अनिल कश्यप जी सिंह की अच्छा बाबा कोशिश करते हैं आपका भी। और फिलहाल गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय दोस्त हैं प्रमोद जी की पसंद बहुत ही बेहतरीन लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। बबीता जी लिखते हैं कि आप कौन सा गाना है जी जरा मुझे बताएंगे प्लीज़ बबीता जी। और ओके, और मंगेश दसमुख जी लिखते हैं सुपर डिमांड के लिए धन्यवाद देते हैं आपको भी। और विष्णु जी लिखते हैं कि गाना बहुत ही अच्छा लग रहा है धन्यवाद देता हूँ। और प्यारे प्रमोद बगा जी लिखते हैं कि यानी कि प्रेम को बढ़ावा देने वाला गीत है जी बिल्कुल। और आत्मराम जी लिखते हैं कि ये महक जी की पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद देते हैं उनको। इसके बाद अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करना चाहूँगा यानी कि काजल झक्का जी का। काजल झक्का जी क्या सुनवा रही हैं
1: आपको देखकर
0: बोलिए क्या हुआ।
1: मेरी हर शाम सवर जाती है आपको देखकर, मेरी हर शाम सवर जाती है आप पास रहो तो हर धड़कन भी शायरी बन जाती है, आप पास रहो तो हर धड़कन भी शायरी बन जाती है। नमस्ते गुड इवनिंग आपको रेडियो हॉट स्टार सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्ते गुड इवनिंग। मैं काजल बोल रही हूँ सीतामढ़ी से, मुझे भी एक हिंदी सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग में भेज दे रही हूँ और ये सॉन्ग में सुना दूँगी सबसे पहले मिठू मियाँ जी को, अमन जी आपको, वंशिका जी को और जितने दीवाने दीवानियाँ सुन रही हैं सभी को सुना दूँगी।
0: ओके एंजॉय कीजिए। और ये गाना है और मैं प्ले ना करूँ इम्पॉसिबल, क्योंकि हमको इस गाने में एंजॉय करने में बहुत मजा आता है ना सुंदर।

0: बिल्कुल कल हो ना हो, और विष्णु चंद्र जी लिखते हैं कि कहीं मेरा गाना छूट जाए। जी बिल्कुल छूट सकता है, शायद हो सकता है। और प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि अनिल जी के पसंद बहुत लाजवाब है, बहुत बहुत धन्यवाद देते उनको। और आत्माराम जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: अमन सर जी आज पहली बार हम सुन रहे हैं पूजा भास्कर जी और काजल जक्का जी का इतना लेट गाना, शुक्रिया दोनों को। मैं आत्माराम पाटिल, थैंक यू।
0: अच्छा जी कोई बात नहीं, होता है। अनिल जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए, और काजल जक्का जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। दोस्तों का भी धन्यवाद फीडबैक देने के लिए। और हमारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि हर पल यहाँ जी भर के जियो। बिल्कुल अगला जो डिमांड है मैं प्ले करना चाहूंगा ये राधा जी का, और इंजॉय कीजिए राधे जी अपने गाने को। ओ माय गॉड इनका गाना भी।

0: वेलकम बैक, फीडबैक भी शामिल करता हूँ।
1: अमन भैया, ये जो गाना था कल हो ना हो, इसको बजाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गाना ऐसा है, जब हम लोग छोटे थे तो आकाशवाणी पे युवा जगत कार्यक्रम में ये गाना बजता था, तो उस टाइम ये बहुत ही अच्छा लगता था, छोटे छोटे थे जब। अब भी ये अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद आपको।
0: वेलकम है आपका जी। और नीति क्या नाम है, निशांत राय बोले लिखते हैं कि अच्छा ओके आएगा। और मीना जी लिखते हैं कि आज आपका गाना नहीं चलेगा मीना जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि काजल झगा जी का पसंद बेहतरीन लगी थी, बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि राधे जी का डिमांड बहुत ही प्यारा था। और हमारे प्यारे प्रमोद बगा जी लिखते हैं कि राधे जी आपका चयन बहुत अच्छा गीत लगा है, ओके जी। और अशिल्पा बहन जी लिखते हैं कि ये तुम बिन ना जी सकेंगे, बहुत ही प्यारा गाना है। अगला जो डिमांड है गोपाल यानी परिदार जी का है, मैंने प्यार कर लिया, तो इंजॉय कीजिए।

और लीडर बोर्ड में आज हमारे बने हुए हैं हमारे यानी प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी। तो मैं आपको कॉल लगाने वाला हूँ थोड़ा देर में, और रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन से ही लगाऊंगा, इसीलिए आप एप्लीकेशन को ऐप को अपडेट कर लीजिएगा प्लीज़।

0: एक गाने के बाद मैं आपको इन कॉल लगाऊंगा। फिलहाल आप ऐप को अपडेट कर लीजिए प्लीज। और ये फीडबैक
1: 90 स्पेशल के इतने गाने सुपर कि बिल्कुल प्रोग्राम कब खत्म होने को आ रहा है समझ में नहीं आ रहा सर। शुक्रिया आत्माराम पाटिल
0: जी, धन्यवाद देते हैं आपको भी। और अनिल कश्यप जी ये लिखते हैं कि ये मस्त सॉन्ग एवं सॉन्ग लगा है। अच्छा जी ओके। और कहाँ गए जी, फिलहाल अगला जो डिमांड मैं प्ले कर रहा हूँ वो ये निक्की मृणालिनी जी का मैं प्ले कर रहा हूँ। और मृणालिनी जी एंजॉय कीजिए अपने गाने को। और प्यारे प्रमोद बगाड़े जी, इस गाने के बाद मैं आपको कॉल लगाऊंगा एप्लीकेशन से ही, रेडियो हॉट स्टार के ऐप से आपको कॉल जाएगा, जरूर रिसीव कीजिएगा, लेकिन पहले ऐप को अपडेट जरूर करें।

जी मैं थोड़ा सा पगला भी हूँ और थोड़ा सा सयाना भी। प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि आज की सभी के पसंद बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अशीर्वाद बहन जी लिखते हैं कि मैंने प्यार कर लिया वाला गाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको भी। और काजल झका जी लिखते हैं कि आज के सभी गाने बहुत ही प्यारे प्यारे बज रहे हैं जी। इसी बात पर मैं कॉल लगाता हूँ हम अपने प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़े जी को आज के विनर बनने के लिए।

इन्होंने ऐप शायद अपडेट नहीं किया, मेरे ख्याल से एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिए प्लीज। अगर अपडेट कीजिएगा तो जरूर बात होगी मुझसे। मैं दोबारा कॉल करने की कोशिश करूंगा आपको, एक बार एप्लीकेशन को अपडेट कर लीजिए प्लीज। और गजानन जी लिखते हैं कि थोड़ा सा पगला थोड़ा सा दीवाना गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि अमन जी आज के प्रोग्राम में अगर हम राजस्थानी पंजाबी या बुलंद खाली भेज तो जी बिल्कुल मैं बजाने की कोशिश करूँगा, आप भेजिएगा जरूर। ओके, और शिल्पा बहन जी लिखते हैं कि थोड़ा सा पगला थोड़ा सा आना गाना मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। और अनिल कश्यप जी लिखते हैं कि नाइस सॉन्ग जाए जी बिल्कुल। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय दोस्त यानी कि प्रमोद बगाड़ जी को आज की विनर बनने के लिए बहुत बहुत बधाई हो। अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, किनका किनका किनका। चलिए दो दोस्त हैं हमारे, एक हैं बता देता हूँ किनका, यानी कि तौकीर अंसारी जी और दूसरा है निशांत राय बोले जी। दोनों का एक ही डिमांड है। निशांत राय बोले जी क्या करते हैं हमेशा, यानी कि किसी गाने की जो डिमांड आई रहती है उसका वो कॉपी पेस्ट कर देते हैं मतलब, और यानी दो गाने हो जाते हैं तो मुझे प्ले करना पड़ता है, मैंने दो गाने कम से कम होते हैं तो भाई बजाना पड़ेगा ना। फिलहाल इंजॉय कीजिए।

0: फिलहाल मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं हमारे यानी प्यारे प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि चौखट पे तुम्हारे दम तोड़ जाएंगे, लेकिन सर जी अभी तक आपने अपडेट नहीं किया, प्लीज अपडेट कीजिएगा ताकि मैं आपको कॉल कर सकूँ। निशांत राय वो लिखते हैं कि बहुत लाजवाब गाना है, और बबीता जी क्या कहती हैं?
1: नमस्ते अमन सर जी।
0: नमस्ते।
1: आज का शानदार प्रोग्राम चल रहा है, मतलब रोज चलता है प्रोग्राम शानदार, लेकिन थीम के अनुसार हर रोज चलता है अपने अपने जगह पे। लेकिन एक बात बताऊं अमन सर जी, मैं तो झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्यों मेरे को आदत है सच्चाई बोलने का, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे कुछ भी, लेकिन कोई दोस्त बुरा ना माने। आज जो बिटिया जो शाम को प्रोग्राम करती है, वाओ बहुत मजा की बातें करती हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें भी करती हैं, बच्चे की तरह भी बोल देती हैं, बहुत बढ़िया लगता है उनकी बातें सुन के। तो जो दोस्त छूट जाते हैं उनके नाम भी ले लेते हैं, और जो बकाया रहता है उनको चला भी देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इनके प्रोग्राम तो मतलब अपनी अपनी जगह पर सबके प्रोग्राम सही है, लेकिन इनका प्रोग्राम थोड़ी हटके है। और मैं ये चाहती हूँ कि इनका प्रोग्राम संडे को रखा जाए,
0: अच्छा।
1: ताकि सारे दोस्त जो हमारे भाई बंधु इंतजार करते हैं, मैसेज नहीं पूरा पढ़ पाते हैं जो भेजते हैं, तो उनका हर अरमान पूरा हो जाए, उनसे बातें हो जाए, मैसेज भी पढ़ें, तो संडे को प्रोग्राम बहुत अच्छा से हो जाएगा।
0: अच्छा।
1: तो कोशिश करना कि संडे को हो जाए उनका प्रोग्राम।
0: हाँ तो
1: धन्यवाद।
0: हाँ तो आप ही उनसे कहिए कि संडे को आइए, क्योंकि वो संडे पर छुट्टी पर आती हैं। फिलहाल गजानंद जी लिखते हैं कि निशांत है बोले जी और एक दोस्त की पसंद अच्छी लगी। अगला जो डिमांड है वो मीना इब्राहिम जी के है, और मीना इब्राहिम जी यूएसए सुनना चाहती है, ये गाना इंजॉय कीजिए।

0: हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्रमोद बगाड़ जी, बहुत बहुत आपका वेलकम करते हैं।
1: हेलो
0: हेलो सर जी, नमस्कार। हेलो हेलो, आवाज आई थी आपकी, फिर क्यों नहीं आवाज आ रही है? सर जी नमस्कार। हेलो, दोबारा कॉल लगाते हैं। जी सर जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका, नमस्कार।
1: नमस्कार सर जी, नमस्कार।
0: और कैसे हैं आप?
1: एकदम बढ़िया हो सर जी, मस्त मौला हो।
0: मस्त मौला जी, आज आपने पूरा प्रोग्राम सुना और पूरा अपने फीडबैक दिया हर गाने पर, मतलब किसी गाने को छोड़ा नहीं, और सच में नंबर वन पे।
1: जी जी सर जी, बिल्कुल आज। हेलो,
0: हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं।
1: आज बिल्कुल प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही लग चुका हूँ।
0: अच्छा, बिल्कुल, और लगे हुए लगातार सुन रहे हैं, लगातार फीडबैक पर फीडबैक दिए जा रहे हैं हर गाने पर।
1: जी जी सर जी।
0: और हमारे इस यानी ऐप की खूबी है कि वो बताता है कि किसने कितना मैसेज किया है, और उनका वो टॉप पर ले जाता है। और आज आप यानी कि टॉप पर बने हुए हैं, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, पहली बात ये है। और ये एप्लीकेशन से ही मैंने,
1: थैंक यू सर जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: और मैंने आपको एप्लीकेशन से ही कॉल किया, मतलब रेडियो हॉटस्टार के ऐप से ही आपको कॉल गया हुआ है, आवाज क्लियर है?
1: जी हाँ सर जी,
0: बिल्कुल
1: सही है, एकदम क्लियर तो नहीं है लेकिन सही है
0: एकदम। यहाँ पे आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है मेरे पास।
1: अच्छा अच्छा, जैसे चलो अच्छी बात है।
0: ओके, फिलहाल ये बताइए कि आज
1: नहीं, हमारे नेटवर्क में थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाती है ना यहाँ पे घर पे।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, नेटवर्क में दिक्कत होता है।
1: जी जी,
0: आप आपने क्या सुनना पसंद करेंगे ये मुझे बताइए।
1: अब आज आप हमें बारिश फिल्म का गीत सुना दीजिए।
0: बताइए कौन सा गाना है।
1: ना कोई दोष तेरा ना कोई दोष मेरा।
0: ना कोई
1: दोष तेरा ना कोई दोष मेरा।
0: अच्छा जी, ओके, ढूंढता हूँ मैं ये गाना। मुझे तो मिल गया ये गाना, बिल्कुल 1991 का है ना।
1: हाँ जी सर जी।
0: ओके सर जी,
1: साधना सरगम जी की आवाज है, और शायद उदित नारायण है या कौन और है, कोई पता नहीं।
0: जी जी, मैंने गाना प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।
1: अच्छा अच्छा सर जी, थैंक यू सर जी, सुनते रहे लगातार बारम्बार।

वेलकम बैक ऑन रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं तो फिलहाल शामिल कर लेता हूँ। और यहाँ पे दीपक कुमार गायकवाड़ जी लिखते हैं कि बबीता जी की आवाज़ इतनी स्पष्ट और साफ कैसे आती है, तो बबीता जी से पूछना पड़ेगा वो कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, बबीता जी ही बता पाएंगी। और शिल्पा बहन लिखते हैं कि रब ना करे गाना मुझे अच्छा लगा है। और प्रमोद बगाड़ जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, ओके जी। और गजानंद जी लिखते हैं कि आदरणीय प्रमोद बगाड़ जी के पसंद बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको भी। और काजल झका जी लिखते हैं गाना मुझे बहुत ही प्यारा लगा। इसी बात अगला जो डिमांड है वो शिल्पा बेन जी का मैं प्ले करना चाहता हूँ। और शिल्पा बेन जी इंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल याद आती है तो क्या कर सकते हैं, बहुत मैं मिस करता हूँ ना। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि चल मेरे संग वाला गाना भी बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे शिल्पा मैं लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। बबीता जी लिखते हैं कि Realme C37 है। ओके जी, तो आपका ये फोन का नाम है Realme C37। ओके, अच्छा है, फिलहाल आपका गाना प्ले करता हूँ मैं।
1: नमस्ते अमन सर जी, मैं ये गाना भेज रही हूँ आशा झुलका वाला, मूवी का नाम है होते होते प्यार हो गया। और गाने का बोल भी ऐसा ही है, ए दिल दीवाने हुआ क्या होते होते प्यार हो गया। और इस गाने में आपको और दोनों बिटिया रानी और हमारे दोस्त जितने हैं रेडियो स्टार के सारे दीवाने दीवाने सबको शुरुआत रहा, धन्यवाद।

और समय के अभाव में मैंने बहुत से दोस्तों गाने को रिजेक्ट कर दिया है, उसके लिए आई एम सॉरी फिलहाल। और मतलब एक और गाना मैं प्ले करके जाने वाला हूँ, और ये है निक्की खान जी का। एंजॉय कीजिए निक्की खान जी। और इसके बाद से मैं आप सबके लिए, जितने लोगों का गाना मैंने कैंसिल किया उन सबके लिए मैं अपने पसंद से गाना प्ले करके जाऊंगा।

ओके तो जाते जाते आखिरी गाना मैं आप सबके नाम करके जा रहा हूँ, एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो दीवाना बना दे। और इसी गाने के साथ मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत, मिलते हैं फिर कल शाम 6 या 6:30 बजे और मिक्स मस्ती में हर तरह गाने प्ले होंगे, भोजपुरी हिंदी और भी कुछ देखेंगे। फिलहाल सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो आपको दीवाना बना दे।

देखो वो आ गया।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: या अल्लाह,
0: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

जमी ताकत ताली ताकत जमी ताकत डाला आम होता के जमी ताकत ताली के नंतर ताकत नाकत ताकत जमी ताकत नाकत नाकत जमी ताकत नाकत नाकत जमी ताकत नाकत नाकत जाम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के नंतर जाम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को तारी ता को तारी के जाम तारी जग तारी जाने जाने

नहीं हटूंगा भाई, मिला को रख डालूंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह मेरी मदद कर। अल्लाह मैं कुत्ती को छोड़ूंगा नहीं, मैं

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: यही कहने।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: हाँ तो नैनों में
1: बिंदिया है,
0: माथे पे
1: बिंदिया है,
0: तो बालों में
1: गजरा है,
0: आँखों में
1: गजरा है।
0: ओहो।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 4 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

ए घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।